विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष टीकाराम खटका, सदस्य सचिव सुभाष चन्द्र शिवाकोटी, कार्यालय प्रमुख झरेन्द्र खरेल, तुलसीपुर नगर विकास समिति, तुलसीपुर दान।

अपराह्न 4 बजेको प्रकृति समय सन्देश। बोट बिरुवा लगाऊ, पर्यावरण जोगाऊ।